But mothers know when a child feels the pain, she knows. When there is something wrong with the child, she knows. I have gone beyond my time and I also have to speak in Urdu. So what I will do is I will now change it into Urdu and then talk or do the masaib together with it. Maon ko khuda ki kudrat aisi hai ke maon ko pata chal jata hai ke mere aulad ko kuch ho raha hai. Agar aulad ki sehat theek nahi hai तो मां को पता चल जाता है कि मेरे औलाद की सेहत ठीक नहीं है. अगरचे औलाद मां से कुछ कहे भी नहीं, फिर भी मां बच्चे की आंखों में देख के एहसास कर लेती है कि मेरे बच्चे को ठीक नहीं या मेरे बच्चे को कोई परेशानी है. ये माएं हैं, ये माएं होती हैं. मां कब्र के अंदर भी अपनी औलाद को दुआ देती है. मां जब इस दुनिया से उठ जाती है, उसका बदन जब कब्र के अंदर चला जाता है, तो कब्र के अंदर से भी अपनी औलाद को दुआ देती है. मेरे अजीज दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो आपको याद दिलाऊं, मदीने मुनव्वरा है, 28 रजब सन 60 हिजरी है. हुसैन इब्ने अली नाना के रोजे को छोड़ते हैं, मां की कब्र पे आते हैं. अम्मा, हुसैन मदीना छोड़ना नहीं चाहता. अम्मा, हुसैन आपके पास रहना चाहता है. अम्मा, हुसैन आपकी कब्र के पास रहना चाहता है. मगर अम्मा, हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा है. जाकिरीन यहां पे एक जुमला पढ़ते हैं कि अजब नहीं कि कब्र से जवाब आया हो, बेटा हुसैन तुम जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ रहेगी. मगर एक अजीब और गरीब रिवायत है, आशूर का दिन, मुहर्रम की दूसरी मुहर्रम सन 61 हिजरी है, हुसैन इब्ने अली काफिले के साथ करबला पहुंच गए. हुसैन ने जमीन करबला को खरीद लिया, बनू असद को बुलाया, बनू असद के साथ हुसैन ने वसीयतें कर ली. अचानक फिजा हुसैन के पास आई और जनाब इमाम हुसैन से कहने लगी, मेरे सैयद व आका, आपको आपकी बहन जैनब ने याद किया है. हुसैन उस वक्त दूसरी मुहर्रम को, हुसैन उस वक्त अपने मकाम को छोड़कर अपनी बहन जनाब जैनब के खेमे में आए और जनाब जैनब से हुसैन एक मरतबा हुसैन दाखिल हुए और अपनी बहन से कहा, बहन जैनब क्या बात है, तुमने किस लिए बुलाया है? मैं वसीयतें कर रहा हूं, बनू असद को वसीयतें दे रहा हूं, किस लिए बुलाया है? आप जानते हैं जैनब ने क्या कहा? भैया लकद अदखलनी हौलन अजीमा. भैया मेरे दिल में एक अजीब बेकरारी है. फरमाया, बहन क्या बेकरारी है, तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है? फरमाया, भैया न जाने क्यों जब से हम इस जमीन पर आए हैं, मुझे किसी मां के रोने की आवाज आ रही, मुझे किसी मां के रोने की आवाज आ रही है. हुसैन ने अजब नहीं जैनब से कहा हो, जैनब ये हमारी मां फातिमा जहरा है. आशूर का दिन है, आशूर की शब है. हुसैन एक मरतबा अपने खेमे को छोड़ के और चार निकल के खेमे को छोड़ के मख्तल की तरफ जा रहे हैं. हुसैन के पीछे एक सहाबी हुसैन के साथ साथ चल के आ रहे हैं. एक मरतबा हुसैन ने पूछा कि तुम क्यों आ रहे हो? सहाबी ने कहा, मौला आपकी हिफाजत के लिए आ रहा हूं. हुसैन ने हाथ लिया सहाबी का, एक मरतबा आगे बढ़े, एक सरजमीन पे, एक जगह जमीन पे हुसैन बैठ गए और गिरिया करना शुरू किया. फरमाया, मौला आपने क्यों गिरिया किया? फरमाया, यहां मेरा अली अकबर शहीद होगा. फिर खड़े हुए, फिर दूसरे मकाम पे गए, फिर बैठ गए. कहा, क्यों बैठ गए मौला, क्यों गिरिया किया? फरमाया, यहां मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे. फिर एक जगह खड़े हुए, एक जगह पे गए, कहा, यहां मेरे अली असगर के लिए मैं हुसैन पानी मांगता रहूंगा. ये कहते कहते एक मर्तबा हुसैन नशेब के पास आए. जब नशेब के पास आए

ज़रूरत है। और वो ज़ात, वो शख्सियत जिसका नाम है आयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनाई रहमतुल्लाह अलैह, यानी रहबर शहीद, जिनकी ज़िंदगी 86 साल की, तकरीबन 86 साल की ज़िंदगी, और 86 साल की एक अजीम ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर एक अजीम शहादत की जो उन्हें पूरी ज़िंदगी के इनाम के तौर पर अल्लाह की तरफ से अता हुई, कि ये बेहतरीन इनाम था, उस अजीम ज़िंदगी का बेहतरीन इलाही इनाम था कि जो रहबर इनकलाब को नसीब हुआ। अभी हम इस मसले पर, चूँकि एक ऐसा इंसान की जिसने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी, फिर ऐसी शहादत ख़ुद हासिल की कि जो एक अख्तियारी शहादत थी, कोई मजबूरी या इजबारी वाली शहादत नहीं थी, कोई इस्तरारी शहादत नहीं थी, बल्कि तमाम हालात को देखते हुए शहादत को अख्तियार किया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके जद सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत को अख्तियार करते हुए मदीने से अपना सफ़र शुरू किया, मक्के से आगे बढ़े, हज को छोड़ा और करबला की सरज़मीन तक पहुँचे, और सबको बताते हुए, बाकायदा वो लोग जो साथ में आए उनको भी आगाह करते हुए, और जो लोग नहीं आए और ना आने की एक वजह भी यही बनी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि कैसे रास्ते पे चलें कि जहाँ पर आखिर में जो है वो शहादत पे ख़त्म हो रहा है, और ज़ाहिर है कि ये सबके लिए मुमकिन भी नहीं है। लेकिन अभी जो है ये कि एक इंसान अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारता है तो उस ज़िंदगी के पीछे उसकी फ़िक्रें होती हैं, उसके अफकार होते हैं, और एक निज़ाम फ़िक्री होता है। फ़िक्री निज़ाम यानी ये कि ये नहीं कि एक चीज़ अभी सोच ली और उसकी बुनियाद पे कदम उठा दिया, या बाद में कुछ और चीज़ सोची उसके बुनियाद पे कदम उठाया। जब एक फ़िक्री निज़ाम होता है तो उस फ़िक्री निज़ाम में हर अमल उसी फ़िक्री निज़ाम के तहत आगे बढ़ रहा होता है, हर इकदाम, हर कोशिश, हर इनिशिएटिव, चाहे वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी की हो, इंडिविजुअल ज़िंदगी की हो, अपने नॉर्मल ज़िंदगी की हो, अपनी फैमिली ज़िंदगी लाइफ की हो, या ये कि वो हुकूमती पैमाने पर, सियासी पैमाने पर और आलमी पैमाने पर अगर कोई कदम उठाया जा रहा हो तो उस फ़िक्री निज़ाम के तहत वो कदम उठाया जाता है। और ये अगर हम देखते हैं तो रहबर इनकलाब की ज़िंदगी में जो जो ज़िंदगी नज़र आती है, उस पूरी ज़िंदगी पे अगर हम मुतालिया करते हैं तो एक फ़िक्री निज़ाम पूरी ज़िंदगी पे नज़र आता है। इससे बहुत ज़्यादा उर्दू ज़बान में तो गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन फ़ारसी ज़बान में रहबर इनकलाब की ख़ुद ज़िंदगी ही में जो है रहबर इनकलाब के फ़िक्री निज़ाम, ज़िंदगी के फ़िक्री निज़ाम पर, फ़िक्री सिस्टम जो था आपकी ज़िंदगी का, उस पर किताबें लिखी गई, कई सारी जिल्दें लिखी गईं, कई सारी किताबें लिखी गईं। ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेश नहीं करना है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हम समझना चाहते हैं और अपने उर्दू हिंदी बरादरान के जो ऑडियंस हैं उनको जो बताना चाहते हैं कि एक इंसान अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारता है तो किन उसूलों के तहत, किस फ़िक्री निज़ाम के तहत, किन अफकार के तहत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई भी फ़िक्री निज़ाम नहीं होता, और उसी बुनियाद पर फिर कोई कानून नहीं होता, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, कुछ उसूल नहीं होते हैं, लिहाजा वो बदलती रहती है हालात के अतबार से, ज़िंदगियाँ बदलती रहती हैं। फिर उनकी ज़िंदगी को नहीं कहा जा सकता कि एक एक सिलसिलेवार ज़िंदगी है, बल्कि हम अभी यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे कि जिनके एक जुमले और अगले जुमले के दरमियान में भी जो है कोई निज़ाम मौजूद ना हो। हम जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि जो अगर वो एक ट्वीट भी करता है तो उस ट्वीट के, एक ट्वीट के अंदर जो है कंट्राडिक्शन नज़र आता है, शुरू के जुमले और बाद के जुमलों में कंट्राडिक्शन नज़र आता है, या एक दिन में दो चार ट्वीट हो तो हर जो ट्वीट में जो है वो, ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग इसको समझते हों, यानी इस तरह की सबको समझ में आता है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, इस हद तक पस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल भी बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर उनके उनकी ज़िंदगी में एक बुनियादी उसूल और कानून नहीं होते, प्रिंसिपल्स नहीं होते, फ़िक्री निज़ाम नहीं होता, तो ज़िंदगी में बहुत सारे कंट्राडिक्शन नज़र आते हैं और वो इंसान ख़ुद अपने अंदर भी महसूस कर रहा होता है। लेकिन तारीख़ में ऐसे अजीम इंसान गुजरे हुए हैं कि जिनकी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक एक कानून के तहत रही है, और उसमें सबसे अजीम ज़िंदगियाँ जो हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम की, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की, और उन सब में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और पाकीज़ा और अजीम ज़िंदगी ज़ात गिरामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बरहक वज़ीर और वसी अमीर अलमोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जिस पर शहीद मुतहरी जैसे अजीम इंसान ने जो किताब

है और अलग अलग दिन में अलग अलग पहलू पर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन उन सारी गुफ्तगू का महवर ये होगा कि रहबर इनकलाब ने जो ज़िंदगी गुजारी है उस ज़िंदगी का फ़िक्री निज़ाम क्या रहा है, आइडियोलॉजी क्या रही है, किस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर एक ऐसी अजीम ज़िंदगी उभर कर और निखर कर सामने आ सकती है। अब मुमकिन है ये सवाल पैदा हो कि उस पर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत क्या है। दो पहलू हैं। एक पहलू तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि देखें जो वाक़या पेश आया, जो शहादत पेश आई, माह रमज़ान का वो वक्त, जो लम्हात गुज़रे हैं हमारे आपके सबके और बहुत सारे लोगों के, कि जो पूरी उम्मत के लिए ये मसला था, उम्मत इस्लामी के लिए और उम्मत इस्लामी से हटकर दूसरे लोग भी इस कदर मुतासिर हुए कि मैंने बाज़ लोगों को सुना है कि किस तरीके से उन्होंने ज़्यादा वक्त निकाला है। कभी कभी ये होता है कि मुमकिन है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, बाज़ लोग वाकई उनकी ज़िंदगी पर असर हुआ है। तो इस हम दो पहलू से देखना चाहेंगे। एक पहलू इसलिए रहबर इनकलाब की और रहबर शहीद की ज़िंदगी और उनके अफकार को गहराई से देखना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक जो वाकया पेश आया है उन वाकयात से बहुत ज़्यादा जो हमारा जो राबता रहा है वो ज़्यादा इमोशनल राबता रहा है, और इमोशनल राबते जो हैं वो उसके अपने हदूद होते हैं, एक हद तक रहता है फिर कम पड़ जाता है, इमोशंस इंसान के जो है वो हल्के पड़ जाते हैं, तो उससे वो नतीजा नहीं मिल पाता है कि जो नतीजा होना चाहिए। तो इमोशनल राबता अलग है, लेकिन एक जो है फ़िक्री राबता, और वो फ़िक्री राबता भी उसकी भी कुछ बुनियादें हैं जो आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ की जाएंगी, वो एक अलग मसला है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो हालात हैं अभी, इसमें बहुत बड़े किरदारों की ज़रूरत है, मुसलसल बहुत ही अजीम किरदारों की ज़रूरत है, यानी जो मारका है हक़ व बातिल का, जो ज़ालिमों के सामने मारका है। तो ये नहीं है कि रहबर इनकलाब ने अपनी ज़िंदगी गुजार के शहादत पेश करके एक मरहला तय करके अब सारा मामला ख़त्म कर दिया है, नहीं, बल्कि मुमकिन है कि ये मारका और भी शदीद हो, बल्कि सिर्फ मुमकिन नहीं कह सकते हैं, हम यकीन के तौर पे कह सकते हैं कि आखिरी ज़माने तक पहुंचने के लिए ये मारका बहुत और ज़्यादा शदीद होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे किरदारों की और ज़रूरत है, बहुत सारे किरदार पेश होंगे। अभी हम मुमकिन है एक रहबर की बात कर रहे हों, लेकिन उसी रहबर की ज़िंदगी की तरबियत के ज़रिए से करोड़ों लोग हुए हैं जो अब इस मारके को सर कर रहे हैं, इस मारके में मज़बूती से खड़े हुए हैं। तो ऐसे किरदार के लिए ज़रूरी है कि सिर इमोशनल राबता जो है वो ऐसे किरदार नहीं बना सकता है, मुमकिन ही नहीं है। इमोशंस वाले राबते बस ये होते हैं कि हाँ ठीक है, इंसान जो है उसका दिल मुतमईन हो जाता है, बस जिस दिन रहबर शहीद की शहादत हुई, जिस दिन शहादत हुई 10 रमज़ान को, उस दिन तो लोगों को नहीं मालूम हो पाया, लेकिन 11 रमज़ान को मालूम हुआ। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बताया कि घर में बैठा नहीं जा रहा था, रोज़ा था, भूख थी, प्यास थी, किसी हद तक गर्मी भी थी, हिंदुस्तान में तो किसी हद तक गर्मी भी थी, लेकिन लोग धूप में थे, निकले हुए थे, घरों से निकले हुए थे, देर देर तक सड़कों पे थे, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही अजीम है, लेकिन वो असल में ज़्यादा इमोशन थे, और उससे इंसान फिर थोड़ा सा उसके दिल को राहत हो जाती है, ज़मीर उसका मुतमईन हो जाता है कि एक अजीम इंसान ने ज़िंदगी गुजारी है, हमने उसके लिए यह हक़ अदा कर दिया है, हम जो है रोज़े की हालत में हमने प्रोग्राम में शिरकत की, प्रोटेस्ट में शिरकत की, एहतजाज किया, ये लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी इसलिए नहीं होता है कि इसके ज़रिए से बड़े किरदार नहीं बनते हैं, और जब बड़े किरदार नहीं बनते हैं तो बड़ा मारका भी सर नहीं होता है, और जो मारका है, जो हक़ व बातिल की जंग है, जो ज़ालिमों के मुकाबले में अहले इंसाफ और अहले अदल की जंग है, वो तो जारी रहने वाली है। तो अजीम ज़िंदगियों को गहराई से समझने की इसलिए भी ज़रूरत होती है ताकि उन ज़िंदगियों को देखते हुए इंसान जो है मरहला तय करना उसके लिए आसान हो जाए। अब ये एक बहस है, मैं खाली इशारा कर रहा हूँ, पहले भी कभी गुफ्तगू की गई है कि क़ुरान में या दीगर इलाही किताबों में या और भी तारीख की बहुत सारी किताबों में बहुत ही अजीम किरदारों को इसलिए जो है तफसील के साथ महफूज रखा गया है कि उसका एक फ़लसफ़ा ये है जो क़ुरान में भी मौजूद है। जैसे क़ुरान में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया गया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रल्लाह कसीरा, या एक सूरा जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं और वाजिब तौर पर पढ़ते हैं, पूरी उम्मत इस्लामी में
لازمی طور پہ یہ سورہ 10 بار تو کم سے کم پڑھنا واجب ہی ہوتا ہے، سورہ حمد، اور سورہ حمد کے آخر میں

पेश करते रहेंगे दरमियान में, कि जिनके उसूलों पे चलकर एक इंसान आज के इस दौर में नफाक के दौर में, कि ये नाम शहीद मुतहरी ने दिया है इस ज़माने का, असर नफाक, नफाक के दौर में और घुटन के दौर में, ज़ुल्म सितम के दौर में, वैलूस के बिखर जाने के दौर में, जहाँ बहरान हो, वैलूस का बहरान हो, ऐसे दौर में एक इंसान ऐसी अज़ीमुश्शान, पाकीज़ा और बाबसीरत तदबीर के साथ ज़िंदगी गुजार के चला जाता है कि जो सबको मुतासिर कर देती है, सिर्फ जो है कुछ लोगों को नहीं, किसी ख़ास हलके को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम अपने अजीम और अज़ीज़ और मोहतरम शहीद रहबर के अफकार को थोड़ा सा गहराई के साथ, लेकिन आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक शामिल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तौहीरीन।

0: मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ तो इक्वल
1: जी। हाँ। और उस माशरे में अगर हम उस वक्त देखें जहाँ, अगर चूंकि बात वहीं से शुरू हुई है वेस्ट के माशरे से, तो वहाँ पर जो है वो ख्वातीन के पास बिल्कुल जो है राइट्स नहीं थे। जबकि हम यहाँ तक देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको आज पूरी दुनिया के अंदर एक अजीम इनकलाब और टर्निंग पॉइंट माना जाता है, उसके अंदर भी ख्वातीन के हकूक की कोई बात नहीं थी। तो एक ज़मीना वहाँ पर मौजूद था बहरहाल इस जुल्म की वजह से। लेकिन एक चीज़ जो चूँकि रेलेवेंस के बात है कि हमारे माशरों से क्या रेलेवेंस इसकी बनती है, ये ज़मीना था और बात जो थी, चूँकि हर इंसान फितरी तौर पर इंसाफ को पसंद करता है। जब आप इंसाफ की बात करेंगे, हर आदमी कहेगा, कोई भी नहीं कहना चाहेगा कि मैं इंसाफ का मुखालिफ हूँ, का मुखालिफ हूँ, जुल्म को पसंद करता हूँ। तो उसके बाद जो तसव्वुर हमारे माशरों में इसका आया है वो ये है कि ख्वातीन के हकूक की हर मूवमेंट जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है
0: जी,
1: जबकि ऐसा नहीं है
0: जी। उनके खास पॉइंट्स
1: जी, उनके खास पॉइंट्स हैं, खास मुतालबात हैं,
0: वो खास एक्सपेक्टेशंस हैं और खास स्लोगन्स हैं। जबकि हर वुमन मूवमेंट इज नॉट फेमिनिस्ट मूवमेंट, हर वुमन मूवमेंट को हम ये टैग नहीं दे सकते, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट के खास मुअल्लफात है कि वो कहते हैं कि हमें इक्वल राइट चाहिए हर शोबे में, चाहे फिर वो अथॉरिटी हो, पावर हो, पोजिशन हो, जॉब हो, सैलरी हो, वोटिंग हो, इनहेरिटेंस हो, सोशल स्टेटस हो, हर लिहाज से हमें इक्वालिटी चाहिए।
1: और एक और जो इनके इस सारे स्ट्रैंड्स में, यानी जितने आप, तो क्योंकि बेहतर नहीं है कि उस तरफ जाएं, कितने उसके वेव्स आएंगे, क्या रहा, वो सब आप तकरीबन चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, मतलब आप सब उससे वाकिफ ही हैं। लेकिन एक यूनाइटिंग फैक्टर इक्वालिटी के साथ जो है वो ये कि इन सब का जो इसरार है वो ये है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है ये नाबूद होना चाहिए। यानी ये सब की जितनी फेमिनिस्ट मूवमेंट है, इसी वजह से इस्लाम ने अगरचे ख्वातीन के हकूक की बात की, लेकिन इस नुक्ते की वजह से हम इस्लाम को फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं कह सकते, वेमेंस मूवमेंट कह सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि वहाँ जो हमला है और उसके बहरहाल फिर अपने जो है वजूहात वो बयान करते हैं कि जुल्म का मंशा
2: तो
1: बनता है,
2: वही वेस्ट की जो पास्ट, वो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर एक हालात ऐसे मौजूद थे जिसकी वजह से औरतों को दबाया जा रहा था, औरतों के ऊपर जुल्म था। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि खुद इंग्लैंड का प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1870 में जाके फर्स्ट टाइम वहाँ पर ये पास किया जाता है कि औरतों को अब हक है कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। तो राइट टू ओनरशिप जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। जबकि हम देखते हैं हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो खुद मक्का में हैं और खुद वो मालिक हैं,
1: एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस में हैं,
0: बिजनेस रन करती थी,
2: हाँ बिजनेस रन करती थी, रसूल खुदा उनके यहाँ पर खिदमत करते थे। तो पॉइंट ये है कि कम से कम 1200 साल पहले इस्लाम ने वो राइट ऑफ ओनरशिप जो है वो औरत को दे दिया था। तो वेस्ट में एक जुल्म का एक जुल्म मौजूद था जिसकी वजह से वहां पर एक मूवमेंट चला कि औरतों को उनके हक देने चाहिए, औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, औरतों को शरफ मिलना चाहिए। ये वो तमाम चीजें थी जो इस्लाम ने ईस्ट में आके पेश कर चुका था।
1: अगरचे इसमें जी आदत देखिए, अगरचे हो सकता है कोई आके यहाँ पे कहे कि बहरहाल ईस्टर्न सोसाइटीज के अंदर भी तो खवातीन पे जुल्म हुआ, होता रहा, अभी भी है, कारोकारी या इस किस्म के जो कुरान से शादियाँ, यानी हम उसका इनकार नहीं कर रहे जब ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कानूनी जो हैसियत रखती है, जैसे आपने खुद इशारा किया कि उस वक्त कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जब से इस्लाम आया तो कानूनी तौर पर उसने ख्वातीन को ये सारी चीज़ें दे दी थी। तो जो कुछ भी हो रहा था वो यहाँ पर कानून के खिलाफ था, जबकि वहाँ जो हो रहा था वो कानून के ऐन मुताबिक था
2: जी।
0: देखिए वेस्ट में आपने जो इशारा किया है कि उनके राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स, इनहेरिटेंस राइट, ओनरशिप राइट, ये सब नहीं थे, एजुकेशन के राइट्स वगैरह नहीं थे। इसके अलावा वुमेन को लेकर एक खास तसव्वुर था, और आप देखेंगे कि खुद हिस्ट्री में आपको मिलता है बेबी बूमर्स करके एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ख्वातीन को सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह देखा गया कि तुम्हें बस बच्चे पैदा करना है और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हो जुज ये कि तुम बच्चे पैदा करो। और यही बात थी कि ख्वातीन जो है यहाँ पर वो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज थी कि भाई तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम सोसाइटी के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम सिर्फ बच्चे पैदा करें, हम क्या मशीन है। तो इसीलिए एक रीज़न ये जो फेमिनिज्म का वहाँ पर जो क़याम हुआ है ये भी था कि जुल्म तो कर रहे हो और हमें बिल्कुल एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह देख रहे हो और हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो कि आप बच्चे पैदा करो, इनको संभालो और तुम्हारा बस यही काम है। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम भी सोसाइटी के हिस्से हैं, ये जताने के लिए एक

0: जो है वहाँ पर क़याम हुआ
1: जी।
0: था।
1: बस अगर हम इसकी हिस्ट्री से आ जाएं तो इसके रेलेवेंस की तरफ आ जाएं कि वहाँ पर एक वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ, औरतें औरतों ने आके कहा कि हमें अपना हक चाहिए, और ये मूवमेंट शुरू हुआ और ये तब्दील हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसके फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में
2: ने इसको यूटिलाइज किया, यानी इसको जो है कैपिटलिस्टिक जो वहाँ पर माइंडसेट बढ़ा उसने इसको एक्सप्लॉइट किया, बढ़ावा दिया ताकि उनके वो चीप लेबर जैसे अपने इशारा किया उनको मिलता रहे
1: जी। तो ये ज़मीना हुआ और उसके बाद जो है फेमिनिज्म, लेकिन वहाँ तक रुका नहीं
0: जी।
1: जो अब जो आप जो दुनिया के अंदर सिचुएशन है जहाँ पर एक क्योटिक सिचुएशन को जो ऑथर्स प्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने बात शुरू की थी जेंडर इक्वालिटी से, अब ये बात कर रहे हैं जेंडर फ्रीडम की। अब ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो औरत नहीं है, तुम क्यों औरत हो? यानी एक मर्द भी औरत हो सकता है, एक औरत भी मर्द हो सकती है। औरत के अंदर एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट करके वो जो औरत की आज़ादी, मिसाल दूं एक वाजे करने के लिए कि अमेरिका में जो रेपिस्ट हैं वो रेपिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत क्रिमिनल्स और उनके पर ऐसे बहुत संगीन जुर्म उनके ऊपर हैं, वहाँ कानून ये हो गया कि अगर कोई मर्द कहे कि नहीं मुझे औरत, मैं औरत हूँ, तो उसे मर्द के चैम्बर से निकाल कर औरतों के चैम्बर में डाल देते हैं,
0: प्रिजन में,
1: तो जब वो औरतों के प्रिजन में डालते हैं तो वहां की औरतें कहती हैं ये क्या हो रहा है, ये एक रेपिस्ट है और इसका एक पास्ट इस तरीके का, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे जो है, या बरअक्स आज जो है वहां पर मिसाल के तौर पर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है जिसके अंदर एक मर्द कहता है मैं औरत हूँ और उसको वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में डाल दिया जाता है
2: और जीत भी जाएगा वो यकीन। और
3: स्विमिंग कंपटीशन में आपने देखा होगा कि खवातीन ने बाज़ाफ़्ता इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि भाई ये ट्रांसजेंडर्स को आप अलाउ ना करें विमेंस पार्टिसिपेशन में। यूएफसी में आपने देखा होगा कुछ मर्द जो है वो खुद को खवातीन बताते हुए वारिद हुए और इतनी जो है तबाही मचाई कि फिर जो है
1: तो कुल्लन एक दुनिया, एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां पर एक पहले औरतें बात करती थी आज़ादी के लिए कि हमें आज़ादी चाहिए, अब वो उनकी रूट कॉज से उनकी हुवियत और उनकी आइडेंटिटी को तबाह करने की बात हो रही है कि भाई आप कौन औरत होने ही क्या है।
3: देखिए हम एक बात की तरफ इधर इशारा करें कि ये जो फेमिनिज्म था ना ये एक जमाना था कि जब शुरू हुआ और फिर पीक पर पहुंच गया, अब ये थोड़ा सा उफूल की तरफ आया है, यानी खुद वो जो लोग अपने इद्दया करते थे कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अब खुद वो पीछे हट चुके हैं उन इद्दया से और क्लेम से। मसलन एक रेडिकल फेमिनिज्म का की तरफ इशारा करूं कि वहां पर जो रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था वहां पर खवातीन कह रही थी कि हम क्यों बच्चे पैदा करें, आपको नस्ल बढ़ाना है, आपको आपके फैमिली का नाम जिंदा रखना है, तो आप अपने बच्चे खुद पैदा करें, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम क्यों ये जिम्मेदारी लें, वो हम क्यों माँ बने, हम क्यों घर में पकवान करें, हम क्यों हत्ता तुम्हारे डिज़ायर्स को और सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करें। और यहीं से लेस्बियनिज्म शुरू हुआ, बल्कि इनका यहाँ स्लोगन था कि आई एम अ वुमन एंड आई विल लव अ वुमन। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वुमन की सपोर्ट करते हैं, हम मर्द को पूरी तरह से हमारी जिंदगी से निकालना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम बगैर मर्द के वी डोंट नीड मैन, हम बगैर मर्द के ये सोसाइटी चला सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा ये बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए चला क्योंकि जो खवातीन थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी बढ़ चढ़ कर, एक मुद्दत के बाद उन्हें खुद एहसास होने लगा कि नहीं, मादर होना, माँ होना एक एहसास है जो एक एहसास तकमील, एक कमाल, एक परफेक्शन, एक रुश्त का हमें
1: फेमिनिज्म वो चीज नहीं देता कि एक औरत को
3: उसके कमाल तक, उसकी जो
1: बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ही खत्म कर देता है। यानी तुम्हें हमेशा मर्द जैसा होना है, तुम्हें मर्द जैसा होना है,
2: खिलाफ फितरत है। देखिए जो चीज भी खिलाफ फितरत है,
3: यहाँ पर ये आधी पॉपुलेशन पीछे हट गई,
2: इसीलिए वो इवॉल्व कर रहे हैं। देखें आप जो कि खिलाफ फितरत कोई चीज चल नहीं सकती है, और फेमिनिज्म के साथ जैसे पूरी दुनिया में हर चीज के साथ एक एक्सप्लॉयटेशन का जो है ना वो पहलू हमेशा जुड़ा रहा है। जिस वक्त ये मिशनरीज यहाँ पर आए थे और ये जो पूरे हमारे पास कॉलोनियलिज्म है इसके अंदर भी उन्होंने फेमिनिज्म के काफ़ी ज़्यादा इसको यानी यूटिलाइज किया या कहें कि इसका
1: एक्सप्लॉइट
2: किया, यानी इसकी चाहे उसका वो मास्क लगा कर, क्योंकि यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो है ख़वातीन पे जुल्म होता है इसलिए ये माशरे सही नहीं है, इसलिए ये वैल्यूज सही नहीं है, तो उन माशरों के इस्तेहसाल के लिए भी इसका जो है वो सहारा लिया। लेकिन चूंकि ये चल नहीं सकता, खिलाफ़ फितरत है, इसलिए हमेशा वो आप देखें हर थोड़े अरसे बाद कोई उसके अंदर एक नई चीज़ आती है,
3: चेंज
2: और थोड़े अरसे वो अट्रैक्ट करती है और फिर वो नहीं चल पाती, फिर कुछ और लाने पर मजबूर होते हैं
1: जी। तो ये फेमिनिज़म जहाँ पर औरतों

के इक्वालिटी की बात से बात शुरू हुई थी और इस्लाम, अभी हम आप इस्लाम की नज़र पे भी आने की कोशिश करेंगे, औरतों के राइट्स और इक्वल राइट्स की बात से बात शुरू हुई थी, वहाँ से बात निकल के काफ़ी आगे चली गई है। आज थोड़ा सी हम आते हैं आज की दुनिया में इसके असरात क्या रहे, यानी यही चीज़ जो हम कहते हैं कि, और फिर उसके बाद हम आके देखेंगे

0: भी क्लियर कर दें कि ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, से हमारा रेलेवेंस क्या है, क्योंकि आज की जो एक लड़की जो कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, वो ग्लोबल विलेज में, वो भी हॉलीवुड की मूवी देख के वो चाहती है कि मसलन मुझे उस जैसा बनना है, या वहाँ की वैल्यूज को देख के कहते हैं कि नहीं, आइडियल वर्ल्ड कौन सा, जैसे आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं ड्रीम वर्ल्ड किसे बनाया जाता है, वो हॉलीवुड के जरिए से उन्हीं कंट्रीज को बनाया जाता है। तो हम इस डिस्कशन के बाद
1: वो नहीं जाती जो घर में खातून काम करती है वो भी टीवी देखती है, तो वो भी उसको भी,
2: और ये सिर्फ हॉलीवुड की बात नहीं है बल्कि बॉलीवुड में बाज़ाफ्ता इस उनवान को नजर में रखते हुए फिल्में बनाई जा रही है और ये प्रमोट किया जा रहा है कि वुमेन में पावर है, वुमेन में अथॉरिटी है, वो मर्द से कम नहीं है, वो भी सोसाइटी में ना सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकती है बल्कि डोमिनेट
0: कर सकती है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन है कि फेमिनिज्म इक्वालिटी में बिलीव करता है या डोमिनेशन में बिलीव करता है, क्योंकि जब भी इक्वालिटी की बात आती है तो मिसाल के तौर पर जब कहा जाता है ठीक है आप इक्वल हैं, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसकी तरफ हम लोग आ ही गए गुफ्तगु में कि क्या मर्द और औरत इक्वल हैं या कोई सुपीरियर है, तो वहां पर ये आर्ग्यूमेंट हमेशा देते हैं कि नहीं हम लोग तो इक्वल हैं, लेकिन जब खिदमात की, देखिए दो चीज़ें ना, एक ये है राइट्स हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। इस्लाम ने जो नज़रिया पेश किया वो क्या है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों प्रोपोर्शनल
3: प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल
0: ठीक है ना, यानी कि आपकी जितनी आपके जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक आपके राइट्स हैं। तो इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स और सारे नारे राइट्स के ऊपर हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नारा नहीं है
3: रिस्पॉन्सिबिलिटी,
0: आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं मिलती, जिसके नेगेटिव असरात हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर आते हैं। अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड करना चाहें तो।
2: ये यही बात जो इक्वालिटी वाली थी, इसको जो है हम दो नजरियों में डिवाइड कर सकते हैं, दो एस्पेक्ट में। एक है इंसान होने के नाते इक्वल होना, एक है फिजिकल अपीयरेंस, और एक है जो अंदरूनी एहसासात होते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप आकर इंसान होने के नाते देखते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, और इस्लाम भी इसी एंगल से देखता है, कहता है कि इंसान होने के नाते खुदा की निगाह में तुम एक जैसे हो
3: जी।
2: और खुदा ने तुम्हारे लिए बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज फराहम किए हैं, क्यों? क्योंकि इंसान के लिए खुदा ने कुछ गोल्स रखे हैं जिसमें से कुर्ब इलाही है और कमाल है, कमाल तक पहुंचना, और ये तो खुदा कहता है इस एंगल से तकवा वगैरह आप देखेंगे, पाइटी वगैरह, तो खुदा कहता है इंसान होने के नाते मैंने तुम्हें ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी है और तुम्हारे लिए इक्वल रास्ता और ग्रोथ का ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो इंसान होने के नाते एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक है फिजिकल एस्पेक्ट और एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट, कि इंशाल्लाह आप लोग इसमें शेयर करें कि ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। तो फेलन हम यही इंसान होने के नाते इस्लाम
0: कुरान की तरफ अगर हम पलटें,
2: हाँ, आयतों की तरफ हम इशारा करते हैं,
0: कुरान की तरफ अगर हम पलटें कि खुदा ने खिलकत इंसान की जब गुफ्तगु की है तो खुदा ने मर्द और औरत दोनों को खल्क किया है, ठीक है
3: जी।
0: और दोनों के लिए खुदा ने गोल्स जो रखे हैं वो कॉमन रखे हैं कुरान में, जहां पर या अय्युहल इंसान या अय्युहल लदीना आमनू, जहां पर भी ये गुफ्तगु है तो मखसूस औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए नहीं है, दोनों के लिए, इंसानों के लिए। अगर आप रजा भाई कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर।
3: नहीं देखें, ये तो बिल्कुल जो सबसे बढ़ के जो हमारी आयत जिससे हम इस्तेफादा करते हैं कि हदफ़ खिलकत की जो हम बात करते हैं कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, यानी मर्दों को जो है वो इबादत के लिए बनाया गया हो और ख़वातीन को मसलन मर्दों की खिदमत के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। और ये बरखिलाफ़ है जो यहूदियत के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर जो नज़रिया रहा, यहूदियत के अंदर काफ़ी अरसे तक एक नज़रिया राइज था कि हत्ता ख़वातीन जो है वो रूह भी नहीं रखती हैं, यानी जैसे ही ये मरतनी हैं ख़वातीन अगर दुनिया से जाती हैं तो बिल्कुल जो है ये चैप्टर बंद, रूह जो है वो बाकी नहीं है, सिर्फ मर्दों की रूह है जो बाकी है।
2: वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी जो ओरिजिनल सिन है ये सब कुछ पलटाते हैं जनाबे हवा की तरफ, कहते हैं इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है,
3: इन्होंने जो है वो उकसाया।
2: अच्छा फिर देखे इसके बाद जो ख्वातीन की मुश्किलात है वो सारी पलटाते हैं इसी बात की तरफ कि क्यों इनको हर महीने ये तकलीफ होती है 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए, क्योंकि इन्होंने ये नक्श ये रोल प्ले किया था पहला गुनाह करने के लिए, तो ये इनकी पनिशमेंट है और इनको सेक्लूड किया जाता है, अलग रखा जाता है, इनको मिस्ट्रीट किया जाता है रिलीजन्स में। तो वो इंसान होने के नाते खुदा कहता है इस्लाम में ये
3: कॉन्सेप्ट, चूंकि बात आ गई इस वक्त तो शहीद मुतहरी ने बहुत खूबसूरत इस पर बात की कि एक तरफ ये तसव्वुर है कि हज़रत आदम जो है वो बिल्कुल सही थे, उनको जो है वो जो बीवी हवा ने उकसाया उभारा उनको, और इसकी वजह से ये ओरिजिनल सिन और हमेशा पर सिन के

0: कि वो जब सोसाइटी में जा रही है तो ऐसा काम करे कि जो उसकी औरत होने के लिहाज से उसकी अर्जिश और उसकी वैल्यू को
1: शरफ को उसको
0: मेंटेन रखे। और तीसरा ये है कि जब भी औरत कोई सोशल रोल प्ले कर रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करे। और एक औरत अगर जब भी कोई ऐसा काम कर रही है जो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो काम जितना भी अफजल है, वो काम वो सही
1: नहीं
0: नहीं है,
1: होगा
0: उसके लिए प्रायोरिटी जो है खुदा ने ये
2: यही
0: तीन रखी
2: ये
0: है।
2: इसमें। मगर उन्होंने देखिए बहुत ही, यानी अभी आखिरी जो रहबर की तकरीर है वाकई बहुत ही जाले, बहुत ही खूबसूरत तकरीर है और लोग वाकई उसको पढ़ें। उसमें उन्होंने कहा देखें आप खुद ये कहते हैं, एक तरफ बच्चे की जान खतरे में है और दूसरी तरफ काम है, तो क्या कहेंगे? फौरन कहेंगे भाई जान
1: जान
2: बचाओ,
1: बचाए
2: काम छोड़ो। का तरबियत भी इसी तरीके से है
0: जी
2: कि एक तरफ तरबियत है, लेकिन उन्होंने उसमें कैद लगाई कि और ये मर्दों और ख़वातीन सब के लिए, ऐसे मर्द के लिए भी जिम्मेदारी उसके घर की अयाल को उसके लिए लेकर आना, उसका खर्च। लेकिन बाज़ जगह पर जो है वो कहते हैं कि कुछ मकाम ऐसे हैं कि जहाँ पर जान की कुर्बानी है, यहाँ पे माल के खबर,
1: सही
2: वो
1: है
2: एक्सेप्शन मौजूद हैं,
1: जी।
2: लेकिन उमूमी जो सूरत हाल है उसमें प्राइमरी रोल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है मर्द के
1: देखिए
2: लिए और
1: आप
2: खातून
1: ये
2: के लिए।
1: आपने जो इशारा किया है, ये फेमिनिज्म का जो डिस्कशन आता है इसमें हम खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कम बात करते हैं, अथॉरिटी और पावर की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इसमें से एक एस्पेक्ट जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता और टोटली इग्नोर करता है वो है रिपरकशंस, इसके नतायज क्या होते हैं। आप आकर वेस्ट की दुनिया में देखिए कि फेमिनिज्म के नाम पर खवातीन जब काम करने चली जाती थी, मर्द और खवातीन दोनों काम पर गए हुए, बच्चा स्कूल से आता है और घर में कोई नहीं होता है, ऐसे बच्चों को कहा जाता था टर्नकी किड्स, कि ये आते हैं खुद अपने घर का दरवाजा
2: दरवाजा खुद
1: खोलते हैं और
2: खोलते हैं
1: अकेले
2: जी,
1: घर में बैठे होते हैं, और इनकी रवान पर यानी इनकी साइकोलॉजी पर
2: साइकोलॉजिस्ट के लिए
1: इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आगे चल के इनमें से कई बच्चे जो है सीरियल किलर्स बन जाते हैं। और आप आज की दुनिया में देखिए जनरेशन मिलेनियल्स और जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, ये बच्चे अगर आप देखेंगे तो इनकी इंटेलिजेंस लेवल इतनी नीचे आ चुकी है आजकल के बच्चों के अंदर, जो ये यूट्यूबर्स और ये सब आपको दिख रहे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि दुनिया गोल है या फ्लैट है। इनमें से जैसे KSI जो है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उसको जब बताते कि भाई दुनिया गोल है तो ताज्जुब करता है, कहता है कि अच्छा अजब, मेरे को तो होम स्कूलिंग की गई, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि दुनिया गोल है, मुझे लगता था दुनिया फ्लैट है। तो ये फेमिनिज्म के बहाने औरत को जो
2: जी
1: घर से निकाल
2: जी
1: कर उसकी जिम्मेदारी जो तरबियत की जिम्मेदारी है इससे निकाल कर दूसरों की खिदमत करना, उनको प्रोग्रेस करना, उनकी वेल्थ में कॉन्ट्रीब्यूट करना, लेकिन अपने घर को इग्नोर करना, ये एस्पेक्ट की वजह से आज जो नतीजा वेस्ट भर रहा है इसका कि बच्चे तंबल है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी और एडिक्शन, एब्सोल्यूट एडिक्शन, ना सिर्फ ड्रग्स की तरफ, टीवी, मोबाइल फोन्स और पोर्नोग्राफी की तरफ,
0: जी
1: के
2: देन भाई आपके पास कोई स्टैट्स हैं मुझे मालूम है
1: जी,
2: कि
1: जी,
2: वेस्ट
1: तो
2: में
1: ये
2: जी।
1: काबिले तवज्जो है। और बेबख्शीद मैं ये भी ऐड कर दूं
2: जी,
1: कि इसकी तरफ हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि इस टाइटल और इस उन्वान के तहत ऐसा ना हो कि हम भी इस बहाव में बह जाएं और आज हम कहें कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, अथॉरिटी है, कल जब देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो बेवकूफ और जो है बेहुदा कामों में मशगूल हो गए, तब हम अफसोस करने
2: जी
1: लगे कि क्यों हम इस बात की तरफ पहले से मुतवज्जे नहीं थे।
0: देखिए यही जो आपका पॉइंट, उसके पहले एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अमेरिका में एक हमारे पर जो हमेशा इश्काल किया जाता है इस्लाम की इस्लामी तालीमात पे कि औरत को डिवोर्स का हक नहीं है। इसका जहाँ पर हक है वहाँ पर कहते हैं 80% से ज़्यादा जो तलाक होते हैं उसमें खवातीन इकदाम करती हैं, और अगर वो कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट हैं उनके पास पीछे एक सपोर्ट है प्रोवाइडर बनने का, तो 90% से ज़्यादा केसेस
2: खवातीन के डिवोर्स
0: खवातीन इकदाम करती हैं तलाक होने का। अभी अमेरिका में ये फेमिनिज्म के बढ़ने की वजह से ये है कि अमेरिका में मैरिज इंस्टीट्यूशन टोटली डिस्ट्रॉय हो
1: जी,
0: गया है।
1: फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है।
0: अब जो है 83% अमेरिकन जो है वो शादी नहीं करते हैं, 83%। तो नेचुरल सी बात है कि एक सोसाइटी है जहां पर 83% यानी ये ऑफिशियल डेटा यूएस सेंसस का है कि 2021 में जो फैमिलीज हैं वो सिर्फ 17.8% फैमिलीज रह गई हैं, यानी कि आप सोचें 82% तो एक सोसाइटी ऐसी है जहां पर आप फैमिली नहीं है। अच्छा अभी रिसेंटली
1: सब कुछ एडल्ट्री पे बेस्ड है
0: जी, उसके बाद जो है वो एक सक्सेसफुल वुमन का जो तसव्वुर देते हैं, रिसेंटली एक सर्वे हुआ, यूट्यूब की जो डायरेक्टर थी उसने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया, जिसने YouTube को इतने साल तक रन किया था, एक आइडियल सक्सेसफुल वुमन है, उसने रिजाइन कर दिया बिकॉज उसे लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रही है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वेस्ट के, वो कहते हैं कि औरत को सबसे बड़ा धोखा ये दिया गया है कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे करियर में है, लेकिन तुम्हारी माँ बनने में नहीं है। यानी

0: एक औरत अपने लिए, व्हाई शुड आई टेक द पेन ऑफ गेटिंग मैरिड, ये तसव्वुर को उसके अंदर दिया गया है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हुई। तो एक औरत जो बहुत पैसे कमाती है, वहां पर खवातीन से पूछा गया कि आप बहुत पैसे कमाती हैं, आपकी सेवन डिजिट्स में आपकी सैलरी है डॉलर्स में, ये वो, व्हेन यू रीच होम हाउ डू यू फील, वो जवाब देती है लोनली।
1: लोनली बिल्कुल, यानी खिलाफ फितरत है जिस तरह से खुदा ने खिलकत निज़ाम रखा है। अच्छा अब देखें इसके मुकाबले में ये खुद ये चीज़ गौर तलब है कि फैमिली के ऊपर इतना अटैक क्यों है, क्योंकि इसके मुकाबले में जब आते हैं आप बेहतर जानते हैं कि कई उलमा खुद में जुमलातुल्लाह अराकी का भी मानना यह है कि इस्लाम में बेसिक यूनिट फ़र्द नहीं है
0: फैमिली
1: बल्कि बैत है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे आए अहले बैत, खुदा ने भी एक घर को मॉडल के तौर पर पेश किया, तो माशरा जो है वो बुयूत यानी बैत से मिल बनता है, और बैत टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर
2: सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखिए वैल्यूज आप कहाँ इंस्टिल करते हैं, बच्चों को आप जब तरबियत करते हैं, फैमिली सिस्टम होता है वहाँ जाकर आप जो है वैल्यूज और प्रिंसिपल्स इंस्टिल करते हैं बच्चे के अंदर के, उसको सिखाते हैं। जब घर में सिखाने वाला ही मौजूद ना हो, वो काम पर लगा हुआ है, तो इनको तरबियत कौन करेगा? टीवी करेगा, वीडियोज करेंगे, गेम्स करेंगे, एनिमेशन करेगा, और फिर अगर ये आ भी जाते हैं घर पर तो यही करियर अग्रेसिव वैल्यूज प्रमोट करेंगे, तो सोशल सिस्टम बहुत ही,
0: जिसका रिजल्ट तलाक में होता है। हमारी सोसाइटी में भी तलाक का जो एक रेशियो बढ़ने का, दूसरे रीजंस भी होंगे लेकिन एक ये है कि औरत को जब भी लगता है कि आई एम अ प्रोवाइडर, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली कैन सपोर्ट मी, मैं अगर इसको छोड़ भी दूंगी तो मेरा घर, मेरे घर वाले जो है मेरा ख्याल रखेंगे, जब भी उसको ये कॉन्फिडेंस होता है वहां पर तलाक के रेशियोज जो है वो बढ़ जाते हैं। देखिए अमेरिका का अगर आप देखें, ये जो मॉडल वेस्ट का पेश किया, अमेरिका में 5 में से 1 खातून जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, मर्दों के मुकाबले में औरतों में डिप्रेशन का रेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत को, जो फेमिनिस्ट औरत है, उसे कामयाब भी होना है, उसे पैसे भी कमाने हैं, उसे सोसाइटी में भी सक्सेसफुल होना है, उसे हमेशा खूबसूरत भी दिखना है, एंड वो जो बाहर जाएगी वो बस
1: अट्रैक्शन जी उसमें हमेशा वो एक अट्रैक्शन, और आप जानते हो एक मनफी यानी अट्रैक्शन उसमें हमेशा होनी चाहिए। हाँ,
0: यानी कि वो कोई मुझे देख
1: रहा है, मुझे देख रहा है,
0: वो जो देख रहा है चाहे वो बस कंडक्टर हो या कोई मतलब अजीब सी बात है एक औरत को। अच्छा यहाँ पर एक अजीब सी बात ये है कि जब मर्दों से जब पूछा जाता है कि औरतों के सिलसिले में कि आप औरतों को कैसे देखते हैं, वो एग्जैक्टली वही बोलते हैं जो इस्लाम की नज़र है, लेकिन जब औरतों से पूछा जाता है कि आपके फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स आपको किस नज़र से देखते हैं, तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छी बात है, वो तो मुझे, हमें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक इंटरव्यूअर जाता है एक औरत से इंटरव्यू करता है, कहता है कि आप कौन सी फ्रेंड को ट्रस्ट करते हैं बताएं, तो इंटरव्यू वो कहती है कि मेरा ये फ्रेंड है, मैं इसको ट्रस्ट करती हूँ और हमारा रिलेशनशिप
2: दोस्ती का
0: है। तो अगर वो कहें कि अगर आप उस, वो अगर आपको, आप उसे चॉइस दें तो आपके साथ जो है वो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहिए, नो नो नो ये तो मेरा फ्रेंड है, तो बोलते अभी कॉल करो उसे और कॉल करके उसे कहो कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, देखो क्या जवाब आएगा उसका। हत्ता स्टीव हार्वी एक बहुत फेमस पर्सन है वहां पर अमेरिका में, वो एक खातून को कहता है कि आप मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती हैं। वो कहती है क्यों नहीं हो सकती है? बोलते क्योंकि मर्द जो औरत को जिस निगाह से देखता है वो इस्लामिक निगाह है। हाँ। वो मर्द हमेशा इंतजार में रहता है कि ये खातून कब मुझे इजाजत दे। हाँ।
2: कोई इंतफा करे, कोई फायदा उठाए मसलन, इसलिए मर्द और जन कभी भी दोस्त
1: नहीं। लेकिन जब भी जो हुदूद खुदा ने रखी है ना, जब भी आप उस हुदूद से आगे बढ़ेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, हमेशा उसकी जो है मनफी असरात हमेशा आएंगे।
0: देखिए हम फंडामेंटल पॉइंट जिसकी तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं कि मर्द डिफरेंट है, औरत डिफरेंट है, और जब भी ये डिफरेंस को खत्म करने की कोशिश की गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसका असर क्या हुआ?
1: तबाही आई है।
0: फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई है। जैसा आप बयान कर रहे थे कि अमेरिका में स्टैट्स हैं कि 60% या 70% से ज़्यादा जो लोग जेल में हैं वो लोग वो हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी जिनके माँ या बाप नहीं थे, उन लोग अकेले। ड्रग्स में और जो रेप्स हैं, ये तमाम चीजों में जहां फैमिली डिस्ट्रॉय होती, जिसकी तरफ आपने इशारा किया,
2: बच्चों पर असर होता है,
0: बच्चों के साइकोलॉजी पर असर होता है। बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, मैं डिवोर्स ले रहा हूं, आई एम नॉट हैप्पी।
2: सिर्फ डिवोर्स की बात नहीं है, जैसे आपने इशारा किया कि सिंगल फैमिलीज है, तो अब सिंगल पेरेंटिंग जो हो चुकी है, माँ है बच्चे है बाप नहीं है, या बाप है बच्चे है माँ नहीं है, और कुछ ऐसे फैमिलीज है जो शादी नहीं करते लेकिन साथ में रह रहे हैं और बच्चे है उनके, मतलब 3 बच्चे हो गए, गए, 5 बच्चे हो गए। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी दोनों के बीच में थोड़ी सी भी आनाकानी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, फौरन वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

0: वो भी इस नीयत से कि मुझे पूरी तरह आजाद होना है, बच्चे तुम ले लो। वो कहती है मैं बच्चे नहीं लूंगी, बच्चे तुम ले लो। नतीजा ये होता है कि ना तुम्हें बच्चे चाहिए ना मुझे बच्चे चाहिए, ये पांच बच्चों को उठाकर वो यतीम खाने में डाल देते हैं। यानी वालिदैन जिंदा है लेकिन यतीमों की जिंदगी होती है उनकी, फिर इनकी तरबियत नहीं होती, इवेंचुअली यही ड्रग्स।
1: जिस बच्चे ने मोहब्बत नहीं देखी होगी, जो घर की जो मोहब्बत गर्मी है, और वो कभी भी मोहब्बत लौटा नहीं सकता जिसको मोहब्बत नहीं मिली समाज में,
0: पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। और फिर ये बच्चे के लिए भी एक सबक बन जाता है कि शादी ऐसी होती है, तो फिर वो जब बड़ा हो जाता है उससे कहते हैं शादी करो, तो कहता मुझे नहीं करनी है शादी। तो ये एक पूरा एक साइकिल बन गया है वहाँ पर।
2: देखिए हम लोग जहां से बात शुरू किए थे कि एक औरत को उसकी हुवियत, उसकी आइडेंटिटी से जो आप निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि एक औरत जो घर में जो सेंट्रल रोल है वो माँ का था, अब वो माँ को आपने कहा तुम माँ नहीं हो,
0: तुम ब्रेड अर्नर हो,
2: तुम क्या हो, तुम ये कंपनी में एक मैनेजर हो, तुम इस पे इफ्तिखार करो,
1: अपने माँ होने पर इफ्तिखार
2: ना करो। आयतुल्लाह खामेनेई ने इसके बारे में कहा है कि सबसे बड़ा जॉब जो दुनिया में खुदा ने रखा है वो एक, और एक आलिम दीन ने प्रेजेंट किया था कि कुछ कुछ लोग सवाल करते हैं कि नबी जो है वो औरतें क्यों नहीं होती हैं। उसके अंदर उन्होंने जवाब ये दिया था बहुत खूबसूरत। उन्होंने कहा था कि जब भी नबी होता है तो नबी एक सोशल रोल प्ले करता है, उसके अंदर सोशल मुत्तहिम होने का है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हर नबी की माँ कौन थी, आप इस पर गौर करें, उस नबी की तरबियत किसने की, वो उसने माँ ने की।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: तो यानी कि वो फंडामेंटल पिलर जो सोसाइटी का है, अगर हम कहते हैं कि सोसाइटी घरों से मिलके बनी है, और घर का फंडामेंटल पिलर कौन है, माँ है। आप माँ को तबाह कर दो, आपको तुम माँ नहीं हो, तुम औरत हो,
1: घर खत्म हो जाएगा,
2: घर खत्म हो जाएगा, इवेंचुअली सोसाइटी खत्म हो जाएगी। और अगर हम आ जाके कहते हैं कि अमेरिका डिस्ट्रॉय हो रहा है, और अमेरिका, तो हम लोग कोई अपनी तरफ से तवाहुम के शिकार नहीं है, खुद उन लोग मानते हैं,
0: खुद डेटा बता रहा है, क्लियरली डेटा बता रहा है,
1: परेशान है इसके ऊपर,
0: फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये इसका एक बड़ा चैलेंज जो शायद कहीं मीडिया में भी शायद ये डिस्कस नहीं करते, ये है कि ये बच्चे जिनकी तरबियत माओं को करना चाहिए, एक प्रिंसिपल्ड ऑर्गेनाइज्ड बच्चा होना चाहिए, ये नहीं होने की वजह से हत्ता इनकी आर्मीज कमजोर हो रही है। अभी इनकी आर्मी में भर्ती होने कोई तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं क्यों जाऊं जंग में, मैं यूट्यूबर बनकर लाखों कमा लूं, मैं क्यों खत्ते मुकदम पर जाकर अपनी जान खतरे में दूं। तो इनकी आर्मीज कमजोर पड़ रही है और ये इस बात की तरफ तवज्जो रखते हैं। तो ये एक पूरा एक साइकिल है जो सोसाइटी को इस तरह डिस्ट्रॉय करता है कि उनका दिफाई सिस्टम भी खत्म हो जाता है।
1: नवीन भाई आपने जो ये इशारा किया ना, यानी कि खुदा ने नबी नहीं बनाया, लेकिन उसके बरक्स यानी यकीनन ये मकाम नहीं दिया, इमाम को नहीं दिया, खुद जो कुरान ने और आयतुल्लाह खामेनेई ने इसी की तरफ अपनी तखरीर में इशारा किया था, वो जो आयत पढ़ी थी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनु इमरअता फिरऔन, कि खुदा ने हर मोमिन के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून औरत हो, अब उसके लिए जिसको भी ईमान तक पहुंचना है उसके लिए खुदा ने किसकी मिसाल दी है,
2: मिसाल दी है,
1: उसकी मिसाल दी है, खातून की मिसाल दी है, फिरौन की ज़ौजा की, उसकी बीवी की मिसाल दी है।
0: बल्कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से हमें हदीस मिलती है कि वो कहती है कि वो कहते हैं कि मेरा उस्वा, मेरा रोल मॉडल बीबी फातिमा
2: सलामुल्लाह,
0: तो वो कहते हैं कि मैं जमाने का इमाम होने के नाते जो है मादरे।
2: खूब, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर औरतों के लिए। खुदा ने, ठीक है, एक नबी, नबी नहीं है लेकिन मरियम है कुरान में, पूरा एक सूरा है उनके नाम से, उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश किया, हजरत
0: आसिया है, खदीजा है।
1: तो जो शहीद मुतहरी ने इशारा किया कि, और दूसरे उलमा ने भी इसका इशारा किया कि नबी जो है वो हजरत जकरिया है, लेकिन हमें जो शवाहिद कुरान के मिलते हैं उससे ऐसा लगता है मकाम मानवी जो है वो हजरत मरियम का ज्यादा बोलन है, कि वो पूरा वाक्य जब आते हैं तो देखते हैं कि अन्ना हाजा, ये कहाँ से मरियम, फिर कहती है ये फजल रब्बी, खुदा का जो है वो फजल है
2: जी। तो औरत अगर चाहे तो मकाम मरियम तक बिल्कुल पहुँच सकती है। औरत चाहे, देखें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिरौन की वाइफ के सिलसिले में, कि उलमा बयान करते हैं कि एक एक ऐसा माहौल, बहुत बार फिरौनी जो माहौल हो, फिरौनी निज़ाम हो, फिरौनी घर हो, उसके अंदर भी एक माँ अगर मोमिना हो तो फिरौन की तरबियत, मूसा की तरबियत,
0: यानी बातिल के सिस्टम में भी एक मोमिना हो सकती है और नबी की तरबियत, नबी
2: की तरबियत कर सकती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे लिए क्लियर है कि औरत का मकाम, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के मर्द एक तरफ हो जाए, ठीक है, आई मैं मासूमीन के अलावा, पूरी दुनिया के मर्द अगर एक तरफ हो जाए और हजरत फातिमतुज़ज़हरा एक तरफ हो, किसको फजीलत होगी?

0: नेचुरल सी बात है, मासूम से हदीस है कि इमाम कहते हैं, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से हदीस है
1: जी
0: कि इमाम
1: हम पर हुज्जत है,
0: जी हम लोगों पर
1: हुज्जत है और हमारी माँ
0: फातिमा ज़हरा
1: हम पर हुज्जत है।
0: तो औरत किस मकाम तक पहुंच सकती है इस्लाम की नज़र में? औरत उस मकाम तक पहुंच सकती है जिसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं, जिसके लिए रसूल आते हैं। जब वो घर में आती हैं तो रसूल खड़े होते हैं उनका, उनके इस्तकबाल
1: तामा इलैहा, उनकी खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं,
2: ताज़ीम करते हैं, हाथ चूमते, अपनी जगह उनको देते हैं, अब अपनी अबा बिछा कर उनको
0: बैठने के लिए कहते हैं, माथा चूमते हैं। यानी औरत को उस मकाम तक पहुँचा दिया खुदा ने कि हर औरत चाहे आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। What is the criteria of success following Fatima Zahra?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब ये success को West ने define किया है और हमने उसी तारीफ को पकड़ लिया है, और इस्लाम ने जिस success को define किया है, कमाल को define किया है, वो हम भूल गए। क्यों? क्योंकि वो हमें इस तरह से तरबियत की गई है schooling system से, education system से, कि ये definition of success वही है जो West आकर define कर रहा है, ना वो जो इस्लाम कह रहा है या दीन कह रहा है।
0: हाँ, तो इस्लाम औरत की education की right to education, जैसे आपने इशारा किया, इस्लाम कहता नहीं औरत एजुकेशन हासिल करे, आयतुल्लाह खामेनेई ही कहते हैं अपनी एक स्पीच
2: में, बल्कि मेरे खाला उलमा भी कहते हैं, लेकिन एक तरह से वाजिब है कि औरत एजुकेशन हासिल करे।
0: जी
2: मर्द तो खैर करता है, वो उसका एक पर्सपेक्टिव भी है कि वो जाएगा कमाएगा, इसलिए नहीं, औरत को एजुकेशन इसलिए हासिल करना है ताकि वो बच्चों की तरबियत कर सके और उनको अपडेट कर सके सोशल और टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ।
0: जैसे कि आपने भी मुबाहसे में सेशन के पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें
2: वुमेन की जरूरत है, गायनोकोलॉजी है, बल्कि डेंटिस्ट्री भी आप देख ले,
0: वाजिब है, वाजिब किफाई है कि औरत के लिए, कि अगर आपके शहर में कोई औरत जो है गायनेक नहीं है तो आप
1: वाजिब किफाई,
0: आप बने,
1: यानी वाजिब किफाई,
0: वाजिब किफाई। इल्म हासिल करने में इस्लाम ने कहा ठीक है, एक औरत है, आप एक औरत है, आप सक्सेसफुल बनना चाहती हैं, ठीक है, इस्लाम ने कहा रोका है। सक्सेस का क्राइटेरिया कहाँ था कि आप लिबास उतार दें? सक्सेस का क्राइटेरिया कहाँ था? एक आलिमे दीन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कहा था कि देखें कानून होना ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है, कभी भी ऐसा नहीं कि कानून का होना यानी कि मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड है, मिसाल के तौर उन्होंने आपने कहा कि आप हमारे गाँव में आ जाएं, आप कार चलाएं, वहां पर ना लेफ्ट है ना राइट है, ना सिग्नल है ना कुछ है, क्योंकि गाँव है, ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन आप शहर में आएंगे तो आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते। कोई ये नहीं कहता नहीं कि मुझे ये गाड़ी में रेड लाइट पे मुझे नहीं रुकना, आई वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस, ऐसा नहीं कहता, क्यों? बिकॉज़ वो आपके ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम का हिस्सा है।
2: अच्छा, यहाँ प्रोफेशंस की जो बात हो रही थी, बहुत सारे लोग इसको मुनहसर करते हैं इस तरह के प्रोफेशंस जैसे गायनोकोलॉजी वगैरह है, क्योंकि इसमें मसलन प्राइवेट पार्ट्स का एक्सेस होता है वगैरह, नहीं, बल्कि आप देखें कि कुछ प्रोफेशंस, हत्ता डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री में अगर एक खातून मर्द के पास जाती है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी नज़दीक हो जाती है वो जब आपके दांतों पे काम कर रहा है, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर हत्ता खवातीन को चाहिए कि वो डेंटिस्ट्री और इस तरह के फील्ड्स में, हत्ता काउंसलिंग में, आप देखें खुद यहाँ पर जामतुल जहरा में और दूसरे जगहों पर जहाँ पर काउंसलिंग सेशन होते हैं, कई खवातीन जो मुराजे करती हैं तो एक काउंसलर के साथ 5 सेशन से ज्यादा नहीं देते, वो कहते हैं 6ठा सेशन हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी साइकोलॉजी बयान कर रहे हैं,
1: अपने सारे गम दुख उसको बयान कर रहे हैं
2: तो वो दोनों के बीच में एक कंपैशन का रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ खवातीन के लिए सिर्फ गायनोकोलॉजी नहीं है, बल्कि आप जाए काउंसलिंग सीखिए,
1: तरबियत है बच्चों की, जैसे स्कूलों के अंदर किंडरगार्टन हमेशा जब भी टीचर्स होती है, आप देखें हमारे घरों में जब बच्चे आते हैं तो किस मोहब्बत से अपने टीचर का तस्करा कर रहे होते हैं, उनकी बात करते हैं,
2: प्रोफेशंस ओपन है।
0: हाँ, आयतुल्लाह खामेनेई की जो मैं बात पेश करना चाहता, आयतुल्लाह खामेनेई हत्ता कहते हैं कि हराम है एक एक वालिदैन के लिए, जायज नहीं, आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं कि अगर तुम दीनी तासुब की वजह से अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे, तो ये वाज़ह सी बात है कि इस्लाम ने एक औरत को कहा तुम इल्म हासिल करो
2: जी,
0: तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करो और तुम सोसाइटी में आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वालिटी की जो बात है, खुदा ने इक्वल राइट्स दिए हैं आप लोगों को, बहुत सारी जगह पर इक्वल राइट्स हैं आपके इल्म हासिल करने में, हक के शरफ, खुदा ने कहा लकद करमना बनी आदम, खुदा ने इंसान को करामत और शरफ बख्शा, तो किसी सिर्फ मर्दों को बख्शा,
1: अशरफुल मखलूकात होने में मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है,
0: इंसान होने के लिहाज से तमाम वो जगह जहां पर इल्म हासिल करना है, बहुत सारी जगह है जहां पर, आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी ने एक किताब लिखी है जिसमें 110 ऐसे मवारिद उन्होंने जिक्र किए हैं जहां पर उन्होंने
2: कॉमनली वो इक्वल
0: राइट्स
2: है और पूरी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ दोनों के लिए।
1: अच्छा, ये राइट्स यानी राइट्स में भी और तजल्ली में भी है, यानी खुद जो आज आयतुल्लाह जवादी आमिली फरमाते हैं कि जो खुदा की सिफात हैं ये भी एक इल्ज़ाम होता है कि खुदा को मेल बना के पेश किया जाता है। बहरहाल हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्या खुदा की सिफ़ात जमालिया भी हैं और जलालिया भी है। मर्द जो है वो जलाल का मजहर है और खातून जो है वो जमाल का मजहर है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो ये मिलके खुदा की सिफात को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तन्हा नहीं कर सकता कोई।
2: इसीलिए तो है ना कि जब आप शादी करते हैं तो कहते हैं आपका आधा दीन कामिल हो गया, क्यों? क्योंकि सिफात जलाली और सिफात जमाली जमा हो रहे हैं और यहाँ से तो रुश्त और कमाल का रास्ता खुल रहा है
0: जी। तो यहाँ पर हमारे लिए वाजे हो गया। तो हमने दो एरियाज डिस्कस किए कि कुछ एरियाज है जहाँ पर खुदा ने मर्द और औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, कुछ एरियाज है जहाँ पर औरत को खुदा ने सुपीरियर करार दिया है, बर्तरी दी है। वो एक सबसे बड़ी मिसाल माँ की है,
1: बिल्कुल,
0: यानी रसूल का जो फेमस वाक्य है
1: जी, बार बार माँ की तरफ, माँ के साथ नेकी की ताकीद करना जी।
0: रसूल की पूछा तो कहा माँ किसके साथ मैं नेकी करूँ, माँ के साथ, फिर एक बार कहा वालिद के साथ। यहाँ पर ये ना हो कि हम लोग वालिद को कहेंगे वालिद का जो है बेचारा हमेशा मजलूम रहता है, मेहनत वही करता है और हमेशा
2: अभी, अभी तो आपको रिक्वेस्ट आएंगी कि भाई अब ये फेमिनिज्म की तरह आप जो है मैस्कुलिनिज्म पर भी एक करें सेशन, अभी ये खवातीन
0: जो है मर्दों के ऊपर जो जुल्म होते हैं उसके ऊपर भी किया जाए प्रोग्राम।
1: रैपर ने भी कहा कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मर्द भी मजलूम वाकई होता है,
0: कहीं कहीं नहीं होता, बहुत बार होता
1: है।
2: वो क्वेश्चन से काउंसलिंग जो हमारे पास आते हैं, काउंसलिंग का रिक्वेस्ट, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई मर्दों ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी मैं कम कमाता हूं, ठीक है मेरी मजबूरी है, मेरी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं घर पर आता हूं तो मेरी बीवी झगड़ा करती है, कई बार उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया, यानी औरत ने मर्द पे हाथ उठा दिया है, और अब बताएं आप क्या कर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही मजलूम है, मर्द पे भी होता है, लेकिन खैर वो मर्द
0: मर्द जो है देखिए,
1: लेकिन एक सेकंड, इसमें असल चीज ये है कि इस्लाम ना उसकी इजाजत देता है ना इसकी इजाजत देता है। वहां पे मुश्किल ये है कि ये जो इल्जाम लगाते हैं कि अगर कहीं पे मर्द अब्यूज करता है जो खुदा ने उसको प्रिविलेज दिया है, तो वो ये नहीं कहते कि इसने बुरा किया, फॉरेन पॉलिटी कहते हैं कि इस्लाम बुरा है,
0: मुसलमान
1: ऐसा है, यानी इस्लाम की।
0: डेटा और स्टैट्स जो बताते हैं इंडिया के अंदर, खासतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है इंडिया के अंदर, जो और मर्दों पर, मर्दों का मारना औरतों के अंदर, वहां पर जहां मुसलमान है वहां कम है कंपैरेटिवली, जिस स्टेट्स में मुसलमान सबसे ज्यादा है वहां सबसे कम है। जिसका एक रीजन बताते हैं, क्योंकि खुदा ने इल्लत को ही खत्म कर दिया। एक बहुत बड़ी इल्लत, बहुत बड़ा कॉज क्या था, मर्द जो खवातीन पर हमला करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये कि शराबखोरी, शराब पी के आते हैं, अब अपने आपे में नहीं है, मुझे उन्हें नहीं पता, अब वो औरतों को मार रहे हैं और औरतों को, हत्ता आप देखें कि बिहार में एक जब शराब बंद नहीं हुआ था तो वहां पर खवातीन जुलूस लेके गईं।
1: अच्छा,
0: खवातीन जुलूस लेके गई इस बात के लिए कि शराब को
1: बंद किया जाए।
0: देखिए जहां पर ये इससे में बात समझ में आती है, खुदा का कानून जहां पर इजरा होगा
1: बिल्कुल,
0: वो सोसाइटी में सुकून होगा, कामयाबी होगी। अच्छा, अगर मुसलमान अल्लाह का कानून तोड़ेगा तो इसमें कोई फर्क थोड़ा
1: फर्क नहीं, बिल्कुल
0: क्योंकि अल्लाह का कानून टूट रहा है वहां पर जो है।
2: देखिए प्रॉब्लम इस्लाम से नहीं है, प्रॉब्लम मुसलमान से है जो इस्लाम फॉलो नहीं करता है
0: जी।
2: तो हमको चाहिए कि पिन पॉइंट करें कि प्रॉब्लम कहां पर है। हम फौरन आकर इस्लाम को इल्जाम लगाते, इस्लाम को कटेरे में खड़ा करके उसकी जजमेंट शुरू कर देते कि इस्लाम प्रॉब्लमेटिक है
0: जी। तो यहाँ तक हमारे लिए दो एरियाज हो गए कि कुछ एरियाज हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है ये मेल पेट्रियार्की की, जहाँ पर मिसोगिनिज्म की बात होती है, जहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम जो है मर्द सालारी की बात करता है, वहाँ पर जो है ये इस्लाम के अंदर एक निज़ाम, एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पर लीडरशिप एक सिस्टम का नाम है, उस लीडरशिप को खुदा ने मर्दों के हाथ में दिया है, यानी निज़ाम फैमिली का है, फैमिली की लीडरशिप का रोल जो है वाजे से कुरान में आया था, रिजालु कवामून अला निसा, मर्द को खुदा ने एक लीडर बनाया है, हिटलर नहीं बनाया है। यानी लोग इसको जब सुनते हैं, खवातीन खास तौर पे सुनती हैं कि मर्द को लीडर बनाया है, तो उनके जहन में लीडर के बदले हिटलर सुनाई देता है, हिटलर नहीं बनाया है।
2: बल्कि अगर हिटलर सुनाई नहीं भी देता है तो उनके जहन में अथॉरिटी आती है, क्योंकि लीडर के साथ एक जहनियत जो फिक्र है वो ये है कि अथॉरिटी है। तो कहते हैं अगर कोई लीडर है यानी इसके पास अथॉरिटी है, यानी खुदा ने इसको हम पर पावर और अथॉरिटी
1: बनाया है, वो जो दिल चाहे वो कर सकता है। जबकि विलायत का जो कॉन्सेप्ट है, विलायत का कॉन्सेप्ट जो है वो रुश। अच्छा, ये लिमिटेशन देखें, फ़र्ज करें अगर आप लिमिटेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये वाजे है कि मैं नबी नहीं हो सकता, इमाम नहीं हो सकता। अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो बहुत सारी जगहों पे मर्द के लिए भी लिमिटेशन है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है अगर नहीं, मर्द नहीं, को नहीं, बनाया लीडर तो उसमें औरत कहें कि मेरे लिए फौरन इसमें तनखीस है, मतलब मेरे जो है अंदर नक्स को करार दिया गया नहीं,
2: मुझे कमतर समझा गया, ऐसे नहीं, ये दोनों को अपना अपना रोल डिफाइन किया गया
0: जी। सोशल देखिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, घर की मुदीरियत, घर की मैनेजमेंट जो है वो औरत की, मसलन औरत उसकी

0: के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग
1: रबुल बैत पसंद का रबुल बैत असल खातून है कि जिसके गिर घूमता है सब कुछ।
0: तो लेकिन ये भी है कि हम लोग बहुत बार इसको जो है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और मर्द को लीडर नहीं बनाया है और जो निजाम बनाया है लीडरशिप घर की जो है वो मर्द के हाथ में दी है। हाँ ये जनरल रूल है ठीक है, लेकिन आया मुमकिन है कि एक खानवादे में एक फैमिली में एक औरत जो है वो ज्यादा रैशनल हो, एक्सेप्शंस मौजूद हो, ज्यादा रैशनल हो, ज्यादा समझदार हो, तो क्या उसकी मशवरों को तवज्जो ना दी जाए, क्या उसकी बात को ना माना जाए? ये अलग है कि मर्द आके बोले कि नहीं मैं मर्द हूं मेरी बात सुनो,
1: नहीं इतनी जुर्रत कर सकता है घर के मशवरों को?
2: बल्कि मशवरत की भी आपको जो है रिकमेंडेशन की गई अहदीस में मौजूद है कि आप मशवरत करें खानवादे के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ डिस्कस करें और फिर प्लानिंग करें। अब ये बात और है कि अहदीस में कहा गया है कि आप मशवरत के बाद डिसीजन लेना आप अपने हाथ में रखें, क्यों? क्योंकि आप दुनिया में आते हैं, वहां पर मुवाजे होते हैं, यू फेस द सिचुएशंस, तो आपको ज्यादा पता होता है। लेकिन कंटेंपरेरी वर्ल्ड में, आज की दुनिया में खवातीन भी दुनिया में है बाहर, दे फेसिंग द एनवायरमेंट, तो यहां पर दोनों की जो है मशवरत इक्वल
1: मशवरत है। लेकिन देखिए वो भी है जैसे पैगंबर से कहा कि आप जो है शावर हो उनसे आप मशवरा करो, फैसला आजम था, लेकिन जब तस्मीम लो या फैसला लो
2: तो वो अपने हाथ में रखे।
1: दो लोग सफर में जा रहे होते हैं, हम सब ने इसको जब हम एक्सपीरियंस किया है तबलीग के लिए, जहाँ कहीं पे भी किसी एक को लीडर बना देते हैं कि भाई फाइनल फैसला इसका होगा, हमेशा सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये एक फितरी कानून है कि कहीं पे भी चंद लोग होंगे तो उसमें किसी एक को जो है वो लीडरशिप उसके पास होगी, और खुदा ने यहाँ मर्द को दिया तो इसमें हमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, जहाँ से हज़रत फातिम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि एक ख़ास सूरत हाल ऐसी है कि असल लीडरशिप जो है वो इमाम सज्जाद के पास है, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से इमाम जो है वो साइलेंट हैं और इमाम की जो है वो स्पोक्समैन हाँ जो सामने जो बयान करी हज़रत ज़ैनब।
0: तो यहाँ पर जो है तीन टाइप हम लोग ने जो फेमिनिज्म में जहाँ इक्वालिटी की बात है, तो ये इनके फेक क्लेम्स को कुरान ने बहुत पहले इसका आंसर दे चुका था, और इस्लाम को वेस्ट से सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर वो कुव्वत और सलाहियत है जो वेस्ट को वो
2: देखे। खुद ये लीडरशिप जो है ना जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, वो भी अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर दे ताकि मर्दों के लिए मिसकंसेप्शन ना रहे, वो सोचते होंगे कि हमारी अथॉरिटी है, पावर है, नहीं। देखे कुरान में बहुत वाज़े तौर पर कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और खुदा ने मर्द को घर का वली बनाया है, और खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारा वली हूँ, मेरा काम क्या है, तुम्हें जुलमात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाना है, कमाल की तरफ ले जाना है। फिर खुदा बंदे मुताला कर कहता है अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, क्यों भाई? क्योंकि खुदा का काम यही है कि तुमको जुलमात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए, रसूल भी यही करने वाले हैं, उलिल अम्र भी यही करेंगे, और मैंने मर्द को घर का वली बनाया है, क्यों? क्योंकि उसके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी जौजा को और अपने बच्चों को जुलमात से निकाल कर नूर और हिदायत की तरफ ले जाए। तो ये एक
1: और आयत भी जिसमें कहा है कि अपने घर वालों को अपने आप को अपने आप जहन्नुम के नार से बचाओ, तो ये जिम्मेदारी दी गई है।
2: तो ये सिर्फ पावर है ना, अथॉरिटी नहीं है कि एग्जर्ट करे और डिक्टेटरशिप चलाए।
0: जी यहाँ पर जो हम लोग ने पहले भी एक पॉइंट की तरफ वो किया था, इशारा किया था, इस्लाम में जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है वहीं पर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स प्रोपोर्शन
1: हमेशा प्रोपोर्शन।
0: मर्द की जिम्मेदारी नानो नफका है, घर को चलाना है घर की जिम्मेदारी है, मर्द प्रोवाइडर है। औरत मसलन औरत जो कमाती है, मसलन औरत महीने का 1 लाख रुपए कमाती है, 2 लाख कमाती है, वो औरत का है,
1: उसने कहा कि तुम भी जो है वो घर के अंदर कंट्रीब्यूट करो, नहीं जरूरी नहीं है,
0: बल्कि किसके लिए वाजिब है? मर्द के लिए, क्योंकि मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके लिए उसकी राइट्स भी ज्यादा हैं।
2: और ये कानून उकला है, हाँ, सिर्फ इस्लाम का नहीं, हर जगह आप दुनिया में जहां जाएंगे देखेंगे जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहां उसे अथॉरिटी और राइट्स भी बढ़
0: प्रिंसिपल है। और कॉलेज में मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे पास राइट है किस चीज़ का? लाइब्रेरी अटेंड कर, लाइब्रेरी जाने का, क्लास अटेंड करने का, कैंटीन का इस्तेमाल करने का, लेकिन प्रिंसिपल का राइट क्या है? क्लास को चेंज कर देने का,
2: टीचर को चेंज कर देने, प्रिंसिपल का अलग होता है, बोर्ड ऑफ एडवाइजरी का अलग होता है।
0: क्यों वो अगर स्टूडेंट आके कहे कि नहीं मुझे वही प्रिंसिपल वाला राइट चाहिए, तो ये उकलाई
1: कानून नहीं
0: है। जी तो इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट को पेश किया है वो ये तीन अलग अलग नजरियात जो हैं दुनिया के अंदर। इस्लाम बिलीव करता है कि औरत और मर्द जो है वो इंसान होने के लिहाज से इक्वल है, रूह के लिहाज से इक्वल है, कमाल हासिल करने के लिहाज से इक्वल है, और कुछ एरियाज हैं जहां पर खवातीन को

0: औरत होने के लिहाज से बायोलॉजिकल उनकी रूही जो उनकी कैफियत होती है वहाँ पर उनको फजीलत है, कहीं माँ होने के लिहाज से या दूसरे लिहाज से, कहीं पर हम आके देखते हैं कि खुदा ने मर्दों को, क्योंकि मर्द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाहर जाएगा, वो फैसले करेगा, वो सोसाइटी में जो है वो रोल प्ले करेगा, जो सोशल रोल है वहाँ पर मर्द को फजीलत दी है, लेकिन औरतों को लिमिट नहीं किया है। यहाँ पर खुद ईरान का, ईरान में जो खवातीन हैं वो एक्सेप्शनल खवातीन हमें देखने मिलती हैं, जिनको अगर कुछ मिसालें आप लोगों के जहन में अगर आप ऐड करना चाहें।
1: पूरी तारीख के अंदर ईरान के अंदर तो कई इस तरीके के मूवमेंट्स रही हैं कि जिसके अंदर खवातीन ने खास तौर पर इस वक्त
2: रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के अंदर, जंग के अंदर, 8 साल जो जंग चली है इसमें इनका एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल रोल रहा है। हत्ता बे उन्होंने स्पाइज के कई खवातीन जो थे ये स्पाई का रोल प्ले करती थी, इत्तेलात को यहाँ से वहाँ अपनी जान पर खेलकर। तो एक इंडिया, यहाँ जो ईरानियन रेवोल्यूशन और ईरानियन इंडिपेंडेंस है इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा पावरफुल रोल प्ले किया है। हम मिसालें दे सकते हैं बीबी जैनब की, बीबी फातिमा की, उन्होंने जो एहतजाज किया, लेकिन लोग कहते हैं भाई वो तो मासूम थे, वो अहलुल बैत में से थे। नहीं, हम आज के ज़माने 40 साल पहले की बात
1: कर रहे हैं। किताबें हैं काफ़ी जालिब, तो अच्छी बात यह कि उर्दू में तर्जुमा हो गई, शीना की बेटी, माँ मैं जिंदा हूँ। यानी इंसान जब उस अजमत के सामने आता है तो वाकई जी अपने आप को
0: एक डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री भी है द वुमन ऑफ हिजबुल्लाह करके, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक वो वाकया है, मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ। उसमें वो एक खातून बैठी हुई है जिसका शौहर और जिसका शौहर और जिसका बेटा शहीद हो चुका है, तो वो उनकी कब्र पर बैठी हुई है। तो रिपोर्टर को पूछती है तुम्हें लगता है कि ये जो है ये मर गया है? रिपोर्टर कहता है हाँ। तो वो कहती है कि ये नहीं मरा हुआ है, हम मरे हुए हैं। यानी औरत इस मारिफत की मंजिल पर पहुंच जाए कि औरत कहे कि हम मरे हुए हैं, कि हम गुनहगार हैं। ये लोग तो कमाल की मंजिलों पे, कुरान की आयत के हिसाब से
2: जिंदा है,
0: खुदा की तरफ से रिज्क पाते हैं। उसी, माजरत में कंप्लीट कर दूं इस बात को, उसी यानी कि औरत को जो एक प्रेजेंट किया गया बहुत ही कमजोर किस्म की औरत नहीं। यहाँ पर देखें कि इस्लाम की तालीमात का असर एक रूह पर कैसे होता है। वो कहती है कि मेरी 3 या 4 बेटियां हैं और जब मेरी पहली बेटी के लिए रिश्ता आया था तो मुझे पता चला कि ये जो हिजबुल्ला का जवान है तो मैंने उसकी शादी कर दी और वो शहीद हो गया। फिर दूसरी बेटी के लिए आया, मैंने फिर से शादी कर दी, वो भी शहीद हो गया। अब कहती है कि मेरी 2 बेटियां और हैं, अगर एक भी जवान आए और कहे कि मैं हिजबुल्ला का जवान हूँ तो मैं सवाल नहीं करूँगी उससे दूसरा, मैं फौरन अपनी बेटी का हाथ उसके। तो आप देखें कि वो ईसार जिसके इस्लाम बात कर रहा है, अपने बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा, एक औरत, एक माँ क्या करती है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के आगे, इताअत के आगे। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला का वाकया मिलता है कि इमाम खुमैनी के पास एक खातून आती है, यही जो औरत को इस्लाम किस मंजिल तक ले जाता है। एक खातून आती है अपने जेब से एक वो निकालती, ये फोटो निकाल के तस्वीर, आप एक्सप्लेन करें अगर।
2: नहीं आप बताएं,
0: बताएं मैं काफी देर मैंने बोल चुका हूं।
2: ये वो तस्वीर दिखाती है और जो है उनके बेटे की होती है और वो शहीद हो चुके होते हैं, तो फिर वो इसी तरह, खैर शायद मेरा वाकया अलग है, 3 या 4 तस्वीरें निकालती है तो वो इमाम खुमैनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो फिर ताज्जुब करने लगते हैं कि तुम्हारे 3 बेटे 4 बेटे शहीद हो चुके हैं। तो जैसे उसने देखा कि इमाम की आंखों में आंसू आ गए तो फौरन वो तस्वीरें छुपा लेती है, कहते क्या हुआ, यानी क्या माजरा हो गया? तो कहते कि ये आपकी आंखों में आंसू ना आए,
1: इसीलिए
2: तो मैंने 4 बेटे जो है फदा किए हैं इस दीन के लिए, इस हुकूमत इस्लामी के लिए। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो फिर ये शहादत का फायदा ही क्या हुआ? और फौरन वो तस्वीरें।
1: खुद खातून का जो एक तसव्वुर कमजोरी के साथ है, इनकलाब इस्लामी में जब हम देखते हैं, जितने अभी चंद दिनों पहले शहीद ब्रोंसी की 2 दिन पहले शहादत गुजरी है, मारूफ शहीद हैं, या कासिम सुलेमानी या जो है इब्राहिम हादी, जितने बड़े शहीद हैं, एक ख़ास इश्क उन्हें हज़रत ज़हरा से। जबकि आप देखें मैदान जंग का तसव्वुर जब आता है तो मर्द का तसव्वुर आता है, लेकिन अतः सख्त तरीन हालात में जब जंग सख्त हो जाती थी तो हम हज़रत ज़हरा से तवसल करते
2: बजाय इसके कि हम जो है हमारी तारीख में शुजात इमाम अली और ये सब की बातें करते, लेकिन ये एक ख़ास जी अटैचमेंट जो है मादर से।
0: ये तमाम एग्जांपल्स के अंदर ये जो औरत का एक फंडामेंटल रोल है वक्त के इमाम के लिए तैयारी के लिए,
1: बहुत
0: वहां पर वो जो है वो औरत शहीद कासिम सुलेमानी बनाती है,
1: बिल्कुल
0: वो औरत है जो शहीद हिम्मत बनाती है, वो औरत है जो शहीद बरौंसी बनाती है। यानी औरत अपने आप को क्यों महदूद समझ रही है कि मैं महदूद हूँ? नहीं, तुम वो हो जो ये बनाते हैं।
1: इसमें एक वाकया, आप यहाँ तो इमाद मुगनिया के बेटी

0: ये वाक़ नकल किया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमारे वालिद की लाश आई और बॉडी आप जानते हैं जिस तरीके से वो डैमेज थी,
1: बयान करें शायद व्यूअर्स नहीं जानते होंगे,
0: जब वो बॉडी आई तो उसके पास चूंकि रॉकेट फायर किया गया था तो बिल्कुल जली हुई हुई थी लाश, उसके अंदर चीज़ें बाकी नहीं बची थी और बेटी की मोहब्बत वैसे भी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त ऐसा लगता था कि जो है वो अब हम लोग सब्र नहीं कर सकते। कहा लेकिन हमारी माँ ने एक ऐसा किया कि जब वो आई तो उन्होंने उस लाश को देख के खिताब किया और कहा कि तुम खुश नसीब हो कि तुम शहीद हुए लेकिन तुम्हारे घर वालों को असीर नहीं किया गया। कहते इस शर्मिंदगी ने हमें जो है वो हौसला दे दिया। कहते थोड़े अरसे बाद जिस बात भाई की जिहाद मुगनिया जब शहीद हुए थे,
1: अपने बेटे की शहादत को फौरन करबला से,
0: अपने शौहर की शहादत को फौरन करबला से वसल किया कि तुम खुश नसीब हो मेरे शौहर के, तुम शहीद हुए मगर तुम्हारे घर वाले असीर नहीं है, वो इज्जत के साथ है।
1: एक ये शहीद शहीद नहीं है, शेख जगजगी की जौजा का भी जो वाकया मिलता है कि खुद वो नकल करते हैं, जो एक शख्स वहां मौजूद थे उन्होंने खुद नकल किया कि जब चार बेटे शहीद हुए और चार बेटों की लाशों को लाई गई रखा गया तो रोई नहीं वो, उन्होंने कहा कि कोई रोएगा नहीं, मेरा बेटा शहीद हुआ है। और पूरी रात वो सराहने बैठ के कुरान पढ़ती रही। यानी यही इस्लाम जो है औरत को वो कमाल की मंजिल तक पहुंचा
2: देता है।
0: जी इसी को मैं वाकये का अगला जो हिस्सा था कि कहा कि उनकी बहन ये कहती है कि उसके बाद जब थोड़े अरसे बाद भाई की शहादत हुई जिहाद की, और उस वक्त भी चूंकि जिस तरीके से शहीद थे कि जिस बहुत ज़्यादा जो है वो जख्मी हालत में था और बहुत फासला नहीं था दोनों शहादतों में, तो उनका अब ऐसा लगता था कि देखिए अब सब्र नहीं हो सकता, यानी जितना सब्र था का। फिर अब वालदा आई तो उन्होंने जब उस लाश को देखा तो उन्होंने कहा कि किस कदर ये अपने बाप की शबी हो गया है लेकिन अभी तक इरबन इरबा तक नहीं पहुंचा, यानी वो जो अकबर के लिए जो है इरबन इरबा का। फिर उस शर्मिंदगी ने हमें जो है ना वो हौसला दिया, यानी किस मंजिला तक एक खातून जा सकती है कि इंसान वाकई तसव्वुर नहीं कर सकता।
2: वुमन का डेफिनेशन वेस्ट करता है और वो वेस्ट आकर महदूद करता है वुमन को कि आप एक वर्किंग पर्सन है, एक करियर अग्रेसिव वुमन है और तुम्हारा प्रोग्रेस और ग्रोथ इसी दायरे में और इसी फील्ड में है, जबकि इस्लाम आके ये दायरों को और महदूदियत को हटा देता है और औरत को आज़ाद करता है। रियल आज़ादी, ट्रू इंडिपेंडेंस इस दीन और इस्लाम के साथ है, ना वेस्टर्न करियर ओरिएंटेशनशिप के साथ। यहाँ पर दीन आकर कहता है कि तुम जहाँ तक रुष्ट कर सकते हो, जहाँ तक कमाल की मंजिल को हासिल कर सकते हो, हमने तुम्हारे लिए रास्ता खुला रखा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। इसको वाइंड अप करते हैं कि किस तरीके से इस्लाम ने औरत को इज्जत, वक़ार, शरफ और मंजिलत अता की हज़रत जहरा के रास्ते पे चलने के लिए, और ये जो दुनिया ने आज पेश किया है, हमने कोशिश की कि उसके कितना वीक है, कितना खोखला है और कितना अंदर से खाली, और उसके रिज़ल्ट में कितना वहाँ पर मुश्किल, कितनी मुश्किलात हैं। इसके बरखिलाफ़ हम अपने सोसाइटी की तरफ आके ये भी कहते हैं कि हमारी सोसाइटी आए और अपने, अगर वहाँ मर्द ऐसे हैं जो इस्लामी कानून पर अमल नहीं कर रहे हैं और अपने जहालत की वजह से आप लोग जो है जुल्म कर रहे हैं, उसको ख़त्म करें, औरत को वो इज़्ज़त, वो मंजिलत, वो वक़ार दें जो इस्लाम ने अता किया है, ताकि हम वो खानवादा बनाएं, वो फैमिली बनाएं जो इमाम के ज़हूर के लिए हम अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को तैयार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, वक्त दिया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे। इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।